0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो पियम चुन के वो एर क्वारो
0: पियम चुन के वो एर क्वारो
1: बिमारा मैं पाचू
0: बिमारा मैं पाचू
2: यू आर लम यू बी डू टेल यू नो का कम पे
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो यम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो